दोस्तों, इस गीत का हर लफ्ज हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत अक्सर अचानक नहीं होती, ये वक्त के साथ, भरोसे के साथ और छोटी छोटी बातों के साथ गहरी होती चली जाती है, रफ्ता रफ्ता, यानी कि धीरे धीरे। जैसे किसी की मुस्कान आदत बन जाए, किसी की बातें सुकून बन जाए और उसकी मौजूदगी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। तो दोस्तों, बताइए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो रफ्ता रफ्ता आपके दिल का सबसे प्यारा एहसास बन गया हो? अगर हाँ, तो आज की इस गजल को हम उसी के नाम करते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और सदाबहार नगमा, लम्बा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं लंबी जुदाई। क्या आप जानते हैं इस सदाबहार गीत को सबसे पहले अपनी दर्द भरी आवाज में अमर बनाया था रेशमा जी ने। फिल्म हीरो का ये गाना आज भी जुदाई की सबसे गहरी आवाज माना जाता है। और इस वक्त आप सुन रहे हैं वर्षा सिंह की खूबसूरत आवाज में, जहां हर शब्द में इंतजार की टीस है और हर सुर में बिछड़ने का दर्द और हर एहसास में किसी अपने की याद। शायद इसीलिए कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि इसमें छिपे एहसास हर दौर में वही रहते हैं। चलिए फिर से डूब जाते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

0: कहते हैं मोहब्बत की असली गहराई अक्सर जुदाई में ही महसूस होती है। साथ रहते हुए जो बातें अनकही रह जाती हैं वही दूर होकर सबसे ज्यादा याद आती है। दोस्तों आप सुन रहे हैं 5 VBI 103.1 FM फ्राइडे विद रिचा और मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी रेडियो हम सफर रिचा। समय हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और प्यारे नगमों के साथ। सुनते रहिए 5 VBI 103.1 FM। You are listening to Friday with Richa only at 5 VBI 103.1 FM.
1: For live streaming at www.5vbi.com.au. Also on demand at
2: www.5vbi.com.au under Indian Hindi.
3: Join us on Friday with Richa.
0: दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं आप हमें बता सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiowithricha@gmail.com और अगर आप किसी भी वजह से हमारे प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो आप सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी www.5vbi.com.au पे जाकर। उस पे आपको क्या करना है, ऑन डिमांड का बटन क्लिक करना है और आप कोई भी प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं अपने प्रोग्राम की ओर।

साथियों, जिंदगी भी कितनी दिलचस्प है ना। हम सब अपने अपने सफर के मुसाफिर हैं। इस सफर में कुछ लोग बस राहगीर बनकर गुजर जाते हैं तो कुछ ऐसे मिलते हैं जो हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं। शायद इसी एहसास को बहुत खूबसूरती से समेटता है मुसाफिर कैफे। जैसे किसी सफर के बीच एक छोटा सा ठिकाना जहाँ कुछ पल सुकून के मिल जाएं, कुछ यादें बन जाएं और दिल फिर से मुस्कुरा उठे। ये गीत हमें याद दिलाता है कि मंजिल जितनी खास है उतना ही खूबसूरत उसका सफ़र भी होता है, और कभी कभी किसी अपने का साथ ही उस सफ़र को यादगार बना देता है। तो आइए इस प्यारे से एहसास के साथ सुनते हैं वो नगमा जिसने ना जाने कितने दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। जी हाँ, मुसाफिर कैफ़े का मेरा बहुत फेवरेट गाना, आइए सुनें।

दोस्तों, कभी कभी कोई गाना सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि दिल में उतर जाता है। उसकी धुन, उसकी आवाज और उसके अल्फाज सब मिलकर एक ऐसा एहसास रच देते हैं जो देर तक हमारे साथ रहता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत गीत दरमिया को अपनी रूहानी आवाज दी है रेखा भारद्वाज और राघव कौशिक ने। इसकी सुकून भरी धुन भी राघव कौशिक की है और दिल को छू लेने वाले बोल रहे हैं अमृता सलूजा ने। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए ऋचा को इजाजत, शुभ संध्या, बाय बाय।